0: ये पोसे नहीं पैसे ये बाप दे ये बफारा से व्हाट्स द शेक इन योर हेड आरामा
1: influence me woman feel I and cheat you playing games our